How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हाथ से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

साइडमा जाम साथी धुमधाम राइट टपन नयाँ इजी मेरो दिया गोली लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the

नयाँ दाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इजी मेरो दिया गुडीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful,

0: व्हाट्सएपमा कसको म्यासेज आएर बसेको रहेछ। भाइ साहब, मेरा नाम मोनु शाह हे। आपने हाम्रो बजार पर आइप्याड बेच्ने के लिए रखा हे ना। हिन्दी पो बोल्छ त यो त। हाँ भाइ साहब, हाँ लेख्न पर्यो। ल बिक्छ जस्तो छ। क्या मैं तुम्हें कल कर सकता हूँ? कल कर सो भन्छ त। ओके सरजी, करो न। लौ कल नै पो गरिहाले त। हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्ते भाई साहब, वो आईप्याड बिक चुका है या अभी भी उपलब्ध है भाई साहब?
0: छ सर, छ, बिकेको छैन नि।
1: नहीं बिका है? ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दरअसल मुझे उस आईप्याड की जरूरत थी। आपकी लोकेशन कहाँ है भाई साहब? क्या मैं एक बार इसे देखकर जा सकता हूँ क्या?
0: ए, मिलेगा मिलेगा बिल्कुल। मैं काठमाडौँ से हूँ सर जी।
1: अरे वाह, मैं भी काठमाडौँ में ही हूँ। क्या आप ग्रीन होटल में मिलकर मुझे आईप्याड दिखा सकती है सर जी?
0: हाँ हाँ हाँ, ग्रीन होटल रे? यो त फाइभ स्टार होटल होइन र भने। ओहो, निकै धनी मान्छेले पो किन्न लागेछ कि क्या हो? किन नमिल्नु, मिलिहाल्छ नि। हाँ सरजी, क्यों नहीं, मैं आऊंगा ना आईप्याड लेकर।
1: ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा हो तो दोपहर एक बजे ग्रीन होटल की दूसरी मंजिल के पहले केबिन में आ जाइए।
0: ओके सरजी, ओके, म ठ्याक्कै एक बजे आइपुग्छु है त।
2: फाइभ स्टार होटलमै बोलाएपछि त ठुलै मान्छे रहेछ नि, इन्डियन हो कि क्या हो?
0: जोसुकै होस् न, मेरो सामान बिके भइगयो नि।
2: त्यसपछि म्याकबुक बिक्ने भयो भनेर हतार हतार ग्रीन होटल पुगे म्याम।
3: ए अनि अनि

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइन्थ्यो
0: किन्दे होला।